हल कहाँ, गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही चबाए हैं। कलगी दर पाछा काल दी गति अगाध कथन करते हैं। दशमेश पिता जी आनंदपुर साहब ते ऊने साहब के विचकार जो बंभौर साहब गुरुद्वारा है सतलुज के ऊपर, उथे बैठ के काल का कौतक वेख के ए बाणी रची। आपने की तकिया कि मिर्ग आया है पानी पीन लई, ज्यों पानी पीन लगता है तां इसते मुख विच मच्छी फस जाती है, दम रुक गया। ऊपर बाज वेख रहा सी, उड़ रहा है बाज, ते वेख रहा कि मिर्ग दे मुख विच मच्छी फस गई, ते ज्यों इस मच्छी नू चपट मारन लई बाज आया तां ओ भी मिर्ग दे सिंगां विच फस के शरीर छड़ गया। अख फुरत विच ए तीन मौतां वेख के, ए काल दा नजारा वेख के साहब कलगीधर पातशाह कहंदे ने जल कहां, डूंगे जल विच रहण वाली मच्छी किथे, किवें काल ने सद लिया किनारे ते, आ जा भाई तेरा समा आ गया। थल कहां, तेज रफ्तार थलां ते दौड़न वाला, जमीन ते दौड़न वाला मिर्ग किथे, मौत ने बुला लिया। उच्चियां आकाशां विच उडारियां मारन वाला बाज किथे, मौत ने बुला लिया, आ जा भाई। ते अख फुरत विच तीन मौतां वेख के धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी कहंदे हन कि जल कहां थल कहां, गगन के गौन कहां, काल के बनाए सब काल ही जबाए हैं। कबीर जी ने बड़ा सुंदर ख्याल लिखे है कि कबीर एक मरण ते दोए मुए, दोए मरण तै चार, चार मरण ते शै मुए, चार पुरख दोए नाल। कबीर जी कथन करते हैं कि एक हरनी दे मरने ते नाल उसका बच्चा भी मर गया, इसलिए दो ओ मर गए। दोहां दे मरने नाल दो होर मर गए, क्योंकि शिकारी ने जाके शिफ्ट बनी है मिर्ग दी, जो निशाना मारिया मिर्गनी नू ता मिर्गनी हरनी भी मर गई, ते जेड़ा इसके बच्चा होने वाला सी क्योंकि गर्भवती सी, बच्चा भी मर गया। हुण जिथे बैठ के इसने निशाना बनिया सी उथे नेड़े ही सप निकलिया, जिसने शिकारी नू दस्या, शिकारी नू दस्या ते शिकारी ने झट तलवार कढ के सप दी भी उथे ही मित कर दिता, ते आप भी उसे वेले शरीर छड गया। तां कबीर जी कहंदे हन दोए मरण ते चार, हुण चार हो गए, इन्हां चौहां दे मरने ते दो होर मर गए। शिकारी दी घरवाली जो गर्भवती सी, उसने जदों वेख्या मेरा पति गुजर गया है, हुण मेरा जीवन त्रिग है, ओ भी ओथे ही टकरां मार मार के आप मर गई। क्योंकि कबीर जी ये सब कुछ अखी वेख रहे सन, ये शेर दी गिनती कीती है बाणी दे विच। मिर्गनी दा बच्चा, शिकारी, शरप, अहेड़न ते पेट दा बच्चा, ये चारे पुरख हन। शिकारी दे घर वाली ते हरनी दे दो, ये दो औरतां हो गईयां। इस दी साखी इस तरह है कि जिस वेले शिकारी अपने घर विचों निकल के बाहर शिकार खेडन गया तां अगों ही एक गर्भ वाली हरनी मिल गई, ते इस वेले शिकारी ने खिंच के निशाना चलाया, उसी वेले हरनी मर गई, नाल ही उसका बच्चा मर गया। इतने नू जिथे फंदक खड़ोता सी ना, उस जगह तो सप निकलिया,
ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਝੱਟ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਫੰਦਕ ਦੀ ਔਰਤ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਗ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗਰਭ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਇਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਦੀ ਗਤੀ ਅਗਾਧ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਈ ਮੇਟ ਡਾਰੇ ਉਸਾਰੇ ਬਣਾਏ, ਉਪਾਰੇ ਗੜੇ ਫੇਰ ਮੇਟੇ ਉਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਮਰੇਂਗੇ,

जैसे एक जननी के होत हैं अनेक सुत, सभी में अधिक प्यारो सुत गोद को स्याने सुत बनज व्यवहार के विचार बिखे, गोद में अचेत एक संपैना सुहेद को स्याने सुत बनज व्यवहार के विचार बिखे, गोद में अचेत हेत संपैना सुहेद को।

उत्तम मत्तम नीच लख गुरुमुख नीचो नीच सदाए पैरी पैपा खाकोए गुरुमुख गुरसिख आप गवाए साध संगत पौ पाओ कर सेवक सेवा कार कमाए मिठा बोलन निव चलन हथों दे कै भला मनाए शब्द सुरत लिवलीन होए दरगै मान निमाणा पाए

मैं मन को मान न त्याग्यो, माया के मद जन्म सिरायो, राम भजन नहीं लाग्यो रहाओ। जम को डंड परयो सिर ऊपर, तब सोवत तै जाग्यो, कहा होत अब कै पछताए, छूटत नाहन पाग्यो। ए चिंता उपजी काट में है, जब गुर चरणन अनुराग्यो, सुफल जन्म नानक तब हुआ, जाओ प्रभ जस में है पाग्यो।

जे राक्षसां तो देवता नहीं बनाया तो फिर मेहर किस काम। पशु प्रेत मुगध को उतारे, पाहन पार उतारे, जेड़े पत्थर हिरदे सन पाहन सन, वली कंधारी वर्गे हंकारिया नू भी तार दिता, नीवा कर दिता। मन नीवा हो जावे तो रब दे नजदीक हो जाएगा। धन गुरु नानक पातशाह जिथे जिथे भी वेख्या के किसे कोलों सृष्टि नू दुख पहुंच रहा है, ता आपने पापी नू बुलाया नहीं, घर जाके तारिया, घर जाके मेरा कीतिया। धन गुरु नानक पातशाह संसार नू तारदे होए देव गंधार शहर विच गए। ये बड़ा जंगली अते पहाड़ा दा इलाका सी। ये लोग जीवां नू खांदे सन, कोई भी मनुख इना दे हाथ लग जावे उसका मांस खाना। किस नगरी दा राजा देवलूत जो हर दम खून दा प्यासा रहिंदा सी, लखां देव इस दे अधीन सन। जेड़ा बंदा इस दी नजर विच आ गया ओ कदी बच नहीं सकया। इना दे अत्याचारां दा सारे इलाके विच बड़ा भय सी। गुरु नानक सच्चे पातशाह जगत जलंदे नू थारदे होए उस जंगल विच चलदे चलदे देव गंधार पहुंचे। मर्दाने बेनती कीती, महाराज बड़ा चंगा है, कुछ दिन ठहरांगे शहर विच, पहुंच के मेरी भूख भी मिटेगी, कोई पदार्थ भी मिलनगे शकन नहीं। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे मर्दानिया ये लोग बड़े खतरनाक हैं, कौडा ता राक्षस एक सी ना, कौडा राक्षस इत्थे लखा राक्षस हैं, मानस जाति नू ए चुन चुन के खांदे हैं। कौडा ता मनुखा नू तेल विच तल के खांदा सी, पर ए मनुख दा मांस कच्चा ही खा जांदे हैं, एदे भयानक हैं। महाराज फिर एहो जिहियां खतरनाक थावां ते तुसी आपे क्यों पहुंच जांदे। मर्दाना कंबिया, महाराज एदे भयानक शहर विच क्यों जा रहे हो, चलो वापस चलिए। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहन लगे ईश्वर कृपा करेगा, एही राक्षस तेरी तन मन करके सेवा करनगे, सीधे रस्ते आ जानगे। मर्दानिया तेरी भुख ने अनेकां दा भला कीता है, अनेकां नू तारिया, अज भी किसे दा भला होवेगा। एही लोग तेरे चरण पूजनगे, तेनू शक्ति प्रकार दे भोजन लिया के छकाउणगे, तेरी सेवा करनगे। धन गुरु नानक पातशाह समाधि स्थित होके बैठ गए। इतने नू देव लूत असे उस दे राक्षी फौजां सामने आ खड़ोतियां, बड़े खुश हन कि अज एक शिकार नहीं तीन मिलते हैं। ते मर्दाने दा रंग पीला पैन लगा, एदियां भयानक शकलां, महाराज अज नहीं बचांगे, ये तो बड़े भयानक मनुख जापदे, बड़े भयानक राक्षस हन। गुरु साहब कहन लगे तू जलाल विच रहो, अकाल पुरख दे सिमरन विच जुड़िया रहो, मन ना खिंडे ता कोई किसे दा कुछ बिगाड़ नहीं सकदा। जिन्हां नू बाणी दा आसरा है उन्हां दा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकदा। कितनियां हनेरियां आउन, तूफान आउन, जिन्हां बूटियां नू जिन्हां ब्रिशां नू सुमेर पर्वत दा आसरा है ना, चखड़ जाओ ना डोलनी, कितने चखड़ आ जान ओ फिर बूटे डोलदे नहीं, उन्हां नू कोई हिला नहीं सकदा। इसे तरह मर्दानिया जिन्हां नू करतार दा आसरा है,
अकाल पुरख का आसरा है, उन्हां दा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकदा। आह किथे किथे गुरु नानक सच्चे पातशाह ने

धन गुरु नानक पातशाह ने जो सारी सृष्टि दे दुख हरन लई संसार विच आए सन, अज इना देवां नूं ही देहां नूं ही देवत्यां दी नगरी बना दिता, धर्मशाला बनवाई। भाई दोनों टाइम सत्संग करया करो, भला करया करो, जीवां ते दया करया करो, तुहाडा भला होवेगा, तुहाडी नगरी सदा आबाद रहेगी। एडियां मेरा होर भी अनेकां ते कीतियां धन गुरु नानक पातशाह ने, जिथे भी मेर हो गई फिर कंगला पातशाह हो गया, जिथे भी चरण पा दिते ओ धरत पूजनीक हो गई, जिथे भी रेठे ते नदर पई ता अमृत हो गया। इसलिए जिथे मेहर तेरी।

हमारी जेबा एक रुपया हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जमे हर तुम बड़ अगम अथाह।

सात जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभु के गुण गावो सास सास प्रभु तुम्हें प्यावो चरण कमल से लागे प्रीत भगत करो प्रभु की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभु सार प्रभु की दृष्टि महासुख होए हरस पावे बिरला कोए जिन चाख्या से जन तिपता ने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सुपर परे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध के संग परे सरन आन सब त्याग अंतर प्रगास अंधन निबलाग बड़ पागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ हुयो दयाल सेवक की नो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन पया जन्म मरण दुख परम गया इच पुनी सरदा सब पूरी राव रहा सत्संग हजूरी जिसका साथ इन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरे जे काल न पाने सो क्यों बिसरे जे किया जाने सो क्यों बिसरे जिन सब किच दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जे अगन में राखे गुरु प्रसाद को बिरला लाखे सो क्यों बिसरे जे बिकते काडे जन्म जन्म का टूटा गाडे गुरु पूरे तत है बुझाया प्रभु अपना नानक जन त्याया साधन संत करो इहो काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरे नाम जपावो भगत पाए तरिये संसार बिन भगति तन होसी छात सर्व कल्याण सुख निद नाम बूढ़त जात पाए विश्राम सगल दुख का होवत नास नानक नाम जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ मन तन अंतर यही सुहाओ नेत्रो पेख दर्श सुख होए मन बिकसै साध चरण तोए भगत जना के मन तन रंग बिरला को पावे संग एक बस्त दीजे करमया गुरु प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहा सर्व समाए प्रभु बखसंद दीन दयाल भगत वचल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आद पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण अतार जो जो जपे सो होए पुनीत भगत पाए लावे मन हीत हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए अनक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन कापर संगीत रसना जपती हर हर नीत पली सो करनी सोभा तनवंत हृदय बसे पूजन गुरुमंत साध संग प्रभु।

नमो श्री भगवती बढ़ली सरोही। ए शस्त्रां दी पूजा है, जिस वेले योधे रण विच जूझदे ने शस्त्र नू नमस्कार करके शस्त्र दी पूजा उचारदे ने, ओ शब्दां दा वर्णन हो रहा है। तलवार दे सारे नां ने, भगौती बडैली सरोही, ए नाम हन तलवार दे। शस्त्र दी पूजा है, गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे नमो श्री भगौती।

सुभता हाथ सोही नमो लोहे की पत्रिका झलहे लहंती नमो दीप ज्वाला मुखी ज्यो बलंती नमो दीप ज्वाला मुखी ज्यो बलंती नमो पान की बान गंगा तरंगी नमो पान की बान गंगा तरंगी तेरे शाम है मोक्ष दाती अपंगी फिर शाम है मोख

अस्तिरपान खंडो खड़ग अस्तिरपान खंडो खड़ग तुक तवर आते अस्तिरपान खंडो खड़ग तुमक तवर अर्पी सैफ सरोही सैफी यही हमारे पीर सैफ सरोही सैफी यही हमारे पीर तुही सैफी तुही तुही तवर तलवार तीर तुही सैफी तुही तुही तवर तलवार नाम तुहारो जो जमे

0: आंदू ही जगदी है कोई निशानी जीत की युद्ध जीते इन ही के प्रसाद
1: शस्त्र की कृपा नाल जंगा युद्धा विच जित प्राप्त हुई। साहब कहंदे
0: तीरो तफंगो बड़ो राम जंगो
1: तीर तफंग और राम जंग पिस्तौल बंदूक और तीर
0: तीरो तफंगो बड़ो राम जंगो धनख तार अणिय कमंद कोरड़ा
1: ये शस्त्रां दे नाम
0: तीरो तफंगो बड़ो राम जंगो तनख तार अणियर कमंद कोरड़ा पंज शस्त्र परवान बिना शस्त्र के संग नरंग भेद जानो
1: केस रखे हुए होन ते शस्त्र कोल ना होवे साहब कहंदे ओ आदमी भेड़ बकरी दी न्याई
0: बिना शस्त्र के संग नरंग भेद जानो युद्ध जीते इन

संगीत भुजंग प्रयात छंद शस्त्रां दे नाम और शस्त्रां दी पूजा साहब जी संगीत छंद विच गा के दसदे आ कहिंदे संगीत भुजंग प्रयात छंद आगर्दन तीरं तुम धड़क आगर्दन तीरं तुम धड़क आगर्दन तीरं तुम धड़क आगर्दन तीरं

नगारे वजदे जोधे गजदे ते सत्संग जी जंग हो रहा साहब कहिंदे नागरदन जागरदन भागरदन भागे नागरदन जागरदन भागरदन भागे सागरदन गाजी महा

0: भाई नंदलाल जी
1: ताल बे मौला
0: हमेशा जिंदा अस्त
1: हमेशा जिंदा अस्त ताल बे मौला हमेशा जिंदा अस्त।

त्रास मिटे, नाम लिए जम त्रास मिटे, कल काल नसे हर सर धैये, लोक परलोक सभी सुधरे। सेवा करन दा फल, सेवा दी महत्ता साहिब गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे, लोक परलोक सभी सुधरे, लोक परलोक सभी सुधरे, हर भगत परापत होए।

चार ताल दे अंदर ए रीतबद्ध है। इसनु ध्रुपद ताल भी कहते ने, चार ताल भी कहते, ध्रुपद ताल भी कहते। श्रवण करना

0: चार ताल के अंदर ए जोड़ी का खास संबंध है। जिस तरह इधरों आवाज और तान लगाने पेंदे ने जोड़ी विच इस दे नाल तोड़े और तिहाइयां बजाउणियां पैंदियां ने और खास तौर पर जोड़ी के बोल का और ध्रुपद का संबंध है। तुसी सरवण किया हुण गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे सेव करो करना निदकी तो साहब कहिंदे सेव करी इन्हीं की भावत शस्त्र की सेवा और शस्त्र की पूजा। गुरु गोबिंद सिंह जी फरमा रहे
1: सेव करो करना निदकी जैसे उपचार नाम लिए जम त्रास मिटे कल काल नशे हर शरण सिधरिए लोक परलोक सभी सुधरे हर भगत प्राप्त होए तिहाइए दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की अस प्रभ छोड़ अवर
0: फतेह सतगुरु की। यह जो जंग विच फतेह हुई है यह किसी आदमी की नहीं यह वाहिगुरु की फतेह है। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहिंदे कि खालसे की फतेह चार कूट विच होएगी चढ़दे तो लहिंदे तक खालसे की फतेह होएगी और खालसे के झंडे झूलणगे। उन्हां दे अपने शब्द श्रवण करने गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे
1: लंक लूट लिया लंक

0: देखो खालसे की फतेह चार फूट के अंदर
1: रूम नाप बजाओ
0: शाम मोहरा चला सुनो नंद लाल एहसास प्रगट करूं मैं अपना राज नंद लाल दे नाल गुरु साहब दे वचन हो रहे भाई नंद लाल साहब सुनो नंद लाल एहसास प्रगट करूं मैं अपना राज
2: चार वर्ण
0: एक वर्ण कराऊं वाहेगुरु सिंह को नाम जपाऊं चार वर्ण एक वर्ण कराऊं वाहेगुरु सिंह को नाम जपाऊं
2: चढ़े तुरंग उड़ावे बाज
0: चढ़े तुरंग उड़ावे बाज देश खालसे को

0: देख खालसे को पुरख जाएंगे भाई, देख खालसे को पुरख जाएंगे
1: भाई।
0: झूलन नेगे हस्ती साजे, द्वार द्वार पर नौब धुके, सवा लाख जब धुके पलीता, सवा लाख जब धुके पलीता, तबे खालसा उदे

राग मारू एक भी आत्मा विच अणख जाग उठती है, क्योंकि उत्थे केवल सच टिकिया हुंदा है। सच है निरभउ निरवैर, इसलिए स्वयं धर्म दृढ़ हुंदा है। अजेही आत्मा विच जुर्रत भर जांदी है, बेपरवाह हो जांदी है, कायरता नस जांदी है। ए है मारू दा प्रभाव, सुन कै सुध न रहे कायर की, जब बाजै धुन मारू। फिर मारू राग विच वैराग भावना दी भी प्रधानता होण करके इसनू प्राणी दे चलाने समय गाउण दी भी प्रथा है। सो युद्धां समय अते चलाने समय इस राग नू गाया जांदा है। एक पासे तां इस विच जोश है, दूजे पासे वैराग। जोश दी भावना विच भगत कबीर जी फरमांदे हन, सूरा सो पहचानी है जो लड़ै दीन कै हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कभू ना छाड़ै खेत। एक वो आत्मदर्शी सूर में हन जिन्ना दे गगन नगर विच दमामे वजदे हन, अते माया तूती दी आवाज नहीं सुनदे। जीवदियां उन्हां नू मरण दी सोझी हुंदी है, इसलई आत्मक पंथियां नू आदेश है, पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस, हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास। सारियां हालतां विच मारू गाव्यां ताही सफल है जे शब्द अंदर है, जे पंच बहराई जित ले गए हन। गुर कै शब्द आराधी है नाम रंग बैराग, जीते पंच बहराईया नानक सफल मारू एह राग। मारू बड़ा प्रसिद्ध अते पुरातन राग है, इसनू कई नामां नाल पुकारिया जांदा है अते भिन्न भिन्न ढंगां नाल गाया जांदा है। साध संगत दे चरणां विच बेनती है कि जिवें श्री दरबार साहिब विच अमृत वेले तो रात तक कीर्तन दियां अठ चौंकियां दी परंपरा है, जिन्हां विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब विचों 31 रागां विच उचारी अमृत बाणी दा कीर्तन निर्धारित रागां विच हुंदा है, उस तों सीध लै के गुरु बख्श कीर्तन दी मर्यादा नूं मुड़ प्रचलित करन लई ही अदुत्ती गुरमत संगीत सम्मेलन एक निमाणा यतन है। शुद्ध रागां दे सरूपां नूं सर्व प्रमाणित अते प्रमाणिक रूप देण लई राग निर्णायक कमेटी बनाई गई। विद्वानां ने शुद्ध रागां दी इकसारता अते सर्व प्रमाणित प्रचलन लई शुद्ध सरूपां नूं अंतम रूप दिता। यह पहला उद्यम है, इसलिए इस विच रहियां कमियां विचार द्वारा दूर कीतियां जा सकदियां हन। राग मारू दा जो पुरातन स्वरूप गाया जांदा सी लगभग अलोप हो चुका है, उसे स्वरूप नूं मुड़ प्रचलित करन लई जो पुरातन स्वरूप निश्चित कीता गया है उस विच दोनों धैवत दोनों निषाद अते दोनों मध्यम दा प्रयोग हुंदा है। आरोह विच रिश्वत नहीं लगदा, इस दा वादी स्वर गंधार अते संवादी निषाद है। गायन समा तीजा पहर असीं दलीप चंद्र बेदी जी दे अति धन्नवादी हां कि जिन्हां ने सानू मारू दा इह स्वरूप दस्या। ए ओहो स्वरूप है जो पुरातन रागी रबाबी सिंह गाउंदे चले आए हन। हुण सरवण करो प्रोफेसर करतार सिंह जी पासो शब्द, मोको कोई न जानत कहियत दास तुम्हारा।

परम सम्मानीय गुरु खालसा साहब सिंह जी, आप जी बड़े प्यार साहब, श्रद्धा साहब, धन धन श्री गोबिंद सिंह साहब जी महाराज, इन्हां दा धन्यवाद करते हुए खालसा पंथ के सृजन हारे दाता की सिफत सलावे अपने शुकराना करन लई बाणी नाल जुड़ा कुछ सिख साध संग ने यतन किया है। बहुत ही श्रद्धा योग कदम है। एक गल याद रखने वाली है, वो है अपने पिता का विरसा। जे असी अपने पिता के वारस हां, जायदाद असां पिता की सामने है, हक असी जताते हैं, तो फिर ये शब्द जो कहे हैं गुरु साहब जी ने क्यों जा खालसा साजिया दिखाया है। आत्म रस जो ज्ञान ही सो है खालस देव, आत्म रस जो ज्ञान ही सो है खालस देव, प्रभ में मोह में तास में रंजक ना इन के। गुरु नानक जी का की प्रथा है, गुरु चेला बनिया चेला गुरु बने, इस करके कोई गुरु अते चेले में भेद नहीं रहा। एक गल होर याद रखने वाली है, गुरु साहब ने सानू गल ना लाया, आनंदपुर का वाकया याद करो, सिंह विदावा लिख के दे गए, आपे अपने घर प्रत आए, उन्होंने मरी हुई अणख जगाया कि ने कर दिया मातावां भैणां अते सिंघणियां ने। मैं जो तत् विचारिया है, अगर अजकल दिया पत्नियां भैणां मातावां इस गल का प्रण कर लैन कि गुरु दे सिख अखवाण वाले अते गुरु नूं विदावा लिख के चल रहे गुरसिख अगर गुरु दे बनना चाहते हैं, अगर गुरु का अखवाना चाहते हैं, तो गुरां का हुक्म मने। ऐसी गल ना होवे, असी भुले हुए छेती घर नूं प्रत आईए ते अच्छा है। ऐसा ना होवे के घर प्रत के फिर जिनी कुर्बानी चाली सिंघां नूं करनी पई, इतिहास आप दे सामने है। ऐसे दशमेश पिता जिन्होंने सानू गरीबां नूं

सास ग्रास भक्ति करने वाला अज अमृत वेले उठा, इशनान कीता है, क्योंकि नेत्रां तो हीण है, जो सैर करन निकलिया ते रस्ता ही गुरु दरबार दा भुल गया। बाणी पढ़दियां नित नित